गुरु दर ते हाजर गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो गुरु घर विखे 30 जून छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा प्रकाश गुरपुर मनाया जावेगा। 1 अगस्त सालाना मीरी पीरी दिवस नूं समर्पण नगर कीर्तन होवेगा। 16 जुलाई तो लैके 2 अगस्त तक विशेष समागम लीके हैं जिन्हां विच कथा दरबार ढाडी दरबार कीर्तन दरबार होणगे अते सचखंड श्री दरबार साहिब दे हजूरी कीर्तनीए संगतां नूं गुरबाणी कीर्तन राही निहाल करनगे। वध वध हाजरियां भर के लाहे प्राप्त करने जी नगर कीर्तन ते जिन्हां संगतां ने गुरु के लंगरां दे स्टालां दी सेवा करनी उह दफ्तर दे नाल संपर्क कर सकदे हन। वलंटियर सिंघां दी सिंघणियां दी लोड़ है जिन्हां ने यह सेवा निभानी होवे उह वी दफ्तर दे नाल संपर्क करके सेवावां प्राप्त कर सकदे हन। आ संगत जी हुण समारती आरती दे कीर्तन दा सेवा निभा रहे हन। भाई साहिब भाई सिमरनजीत सिंह जी तख्त श्री हजूर साहिब वाले उन्हां पासों आनंद माणी

हां जी, ज्यो निगुरा नन्ने दी सिहारी सहित पाठ अगेतर ला के, ज्यो निगुरा बहु बाता जाना, बाता पाठ कस के करना, ओह हर दरगह है प्रस्ती प्रस्ती पाठ भी ध्यान दे नाल करना।

0: नाना पाठ साध संगत जी, नाना अर्थ पाठ का अर्थ हुंदा है होर बेअंत भाव होर तरह की, जदों गल बहुतियां दी गल आवे तो ओदा अर्थ हुंदा है नाना, छोटा भी हुंदा है नाना, नीवा भी हुंदा है। सो साध संगत जी इत्थे नाना पाठ सच्चे पातशाह जी ने उचारण किया, इनू नाना उचारण करना, नाना नहीं उचारण करना।
1: रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे, ता सो प्रीत कटावा, जो अपनो

या चलो उसका अपना निजी अनुभव होवे। मिर्जा गालिब कहिंदा है, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है। कहिंदा जिड़ा मेरा पैर टूट गया ना, इस टूटे पैर दा मेरे ते बड़ा एहसान है, मैं इसका एहसान मन रहा जो मेरा पैर टूट गया। हद हो गई, पैर टूट गया ते टूटे पैर दा एहसान शुकराना पिया करदा। अगे दसदा हो, मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। हुण मैं तेरे दर जोगा रह गया, किधरे जान जोगा रहा ही नहीं। मेरे टूटे हुए पाए तलब का मुझ पे ऐसा है, तुम्हारे दर से अब उठकर कहीं जाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहिंदा गल खुदा तेरी समझ च आ गई है, पर की करा, मैं बोल नहीं सकता, गूंगा समझा नहीं सकता। बिसम बिसम बिसमे ही भैये लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक सन तन रस आइये ज्यो चाख गूंगा मुस्कारे। समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। एक होर गल भी बड़ी कीमती करता है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, हर दिल विच रब्बी प्यार नहीं पैदा होता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो गीत है, इनू हर सांस ते नहीं गाया जा सकता। ये ओ राग है, ये ओ गीत है जिदे वास्ते विशेष वाजा चाहिदा, विशेष साज चाहिदा है। भाव हर दिल दे चे नगमा नहीं गूंजदा, पहले दिल दी बणतर बनानी पैंदी है, सत्संग कर करके कर करके कर करके। तो मैं अर्ज करा, उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। पहला, बड़ा गहरा सरोता होवे ते गुरु दा शब्द चोट कर जाए, निराश हो जाएगा, उदास हो जाएगा। दूसरा, अपनी अकल तो चोट खा लवे, बड़ा ही सियाणा होवे, हर गल नू बड़ी गहराई नाल लैंदा होवे। बीमार असी भी देखते हैं, पर इको ही दिन महात्मा बुद्ध ने जेदा नां सिद्धार्थ सी बीमार देखिया, बस दिल चोट खा गया। मुर्दे असी भी देखते हैं, इको दिन एक लाश देखी, हिरदा चोट खा गया। बुढ़े मनुख असी भी देखते हैं, ज़ईफ ज्यादा उम्र वाले असी 90 साल दे असी भी देखते हैं। उन्हें एक दिन बुढ़ा मनुख देखिया है, सड़क क्रॉस कर रहा सी, लाठी दे आसरे थे, दिल चोट कर गया। अकल इतनी बारीक, इनू कहने हिंदी संवेदना, ऐसे मनुख दे अंदर संवेदना बहुत आती है, हर गल नू छोटी दी छोटी घटना नू भी बहुत वड्डे रूप में महसूस करता है। संवेदना, असी भी देखते हैं बुढ़िया नू, असी भी देखते हैं बीमारा नू, खुद भी बीमार होंदे हैं, असी भी मुरदिया नू देखे आवेगा, एको ही दफा देख के चोट लग गए। या ते अपनी अकल इतनी महान होवे, मनुख अकल तो चोट खा जाए, तो अकल तो चोट खा के भी मनुख उदास हो जाता है, निराश हो जाता है। तीसरा, संसार तो कोई चोट लग जाए, बहुत वड्डा धनाढ्य सी दिवालिया हो गया है, बड़ी इज्जत मान मर्यादा से सरेआम बेइज्जती हो गई है, बड़ी पद प्रतिष्ठा से शक्ति से कुछ भी नहीं रहा, ऐसी हालत विच भी दिल चोट खा जाता है और निराश होके मनुख उदास हो जाता है। उदास होण दे निराश होण दे तीन कारण ने। प्रथम, गुरु दा शब्द चोट कर जाए, सत्संगी होवे, श्रोता होवे। दूसरा, अपनी अकल चोट कर जाए। तीसरा, संसार तो कोई दुख

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर।

जो तुद भावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै

जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, परिये हाथ पैर तंदे पानी तोता उतरस खे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए, परिये मत पापा के संग, ओ तो पै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, बिन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन,

हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक जे को आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सैंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप साला ही साला एती सुरत न पाईया नदियां अत्ते वाह।

पाए जाए ए अंत न जाने को बहुता कही है बहुता होए वड्डा साहेब ऊंचा थाओ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को।

आखे पड़े करे वख्यान, आखे ब्रह्मे आखे इंद, आखे गोपी तै गोविंद, आखे ईश्वर आखे सिद्ध, आखे केते कीते बुद्ध, आखे दानव आखे देव, आखे सोर नार मुन जन सेव, केते आखे आखन पाए, केते कह कह उठ उठ जाए, एते कीते होर करे ता आख न सके केई के, जेवड पावे ते वड होए, नानक जाने साचा सोए, जे को आखे बोल विगान, तां लिखी है सिर गवारा गवार, सो दर के हा सो कर के हा, जित वै सर्व समाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वामन हारे, केते राग प्री सो कहियन, केते गावन हारे, गावे तुनु पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित गुप्त लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन सदा सवारे, गावे इंद इंदासन बैठे देवते अंदर नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति स्थिति संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित पढ़न ईश्वर जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच प्याले, गावे रतन उपाय तेरे आठ सठ तीर्थ नाले, गावे जोध महा बलसूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे, सही तुनु गावे जो तुत पावन, रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सच साहेब, साचा साची नाई, हैपी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया, जिन उपाई कर कर वेख है कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस पावे सोई करसी, हुकम न करना जाई, सो पात सहा सहा पत साहेब, नानक रहन दजाई, मुंदा संतोख सरम पत चोली, ध्यान की करो बभूत, खिंता काल कुआरी काया, जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती, मन जीते जग जीत, आदेश तिसे आदेश, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश, भूत ज्ञान दया पंडारन, कट कट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाकी।

नमस्तं कृपाले नमस्तं रूपे नमस्तं अनूपे नमस्तं अभेके नमस्तं अलेखे नमस्तं अकाये नमस्तं अजाये नमस्तं अगंजे नमस्तं भंजे नमस्तं अडामे नमस्तं अठामे नमस्तं अकर्मं नमस्तं अतर्मं नमस्तं अनामं नमस्तं अतामं नमस्तं अजीते नमस्तं अभीते नमस्तं अभाये नमस्तं अडाये नमस्तं अनिले नमस्तं अनादे नमस्तं अछेदे नमस्तं अगाजे नमस्तं अगंजे नमस्तं अभंजे नमस्तं उदारे नमस्तं अपारे नमस्तं सुएक नमस्तं अनेक नमस्तं अभूते नमस्तं अजूपे नमस्तं निर्कर्मे नमस्तं निर्भर्मे नमस्तं निर्देशे नमस्तं निर्भेषे नमस्तं निर्नामे नमस्तं निर्कामे नमस्तं निर्धाते नमस्तं निर्घाते नमस्तं निर्दूते नमस्तं अभूते नमस्तं अलोके नमस्तं अशोके नमस्तं निर्तापे नमस्तं अथापे नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाये नमस्तं अभाये नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं असर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं संयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अभंगे नमस्तं अगमे नमस्तरमे नमस्तं जलाशय नमस्तं निराशय नमस्तं अजाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्ते अजवे अदेशं अदेशे नमस्तं अवेशे नमस्तं नितामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अवेवे नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वदन्दे नमो सत्वन्दे नमस्तं निर्शाके नमस्तं निर्भाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तत् रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री चांतौ प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है अगम है अजम है अभूत है अजूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अभ्रम है अजीत है अभीत है अवा है अगा है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है प्रियांक प्रिया छंद नमो सर्व माने समस्ते निदाने नमो देव देवे अवे की अवेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवर्मी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण कुकुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तं निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा भिर्द करदा अधो उर्द अर्दं अगा उग हरता परं परं परमेश्वरं प्रोच्पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्त तामं तेरा जोर चातुरी छंद
जलय हैं, थलय हैं, अभीत हैं, अभय हैं, प्रभु हैं, अजू हैं, अदेश हैं, अवेश हैं, प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब मान।

समस्ते निदाने नमस्त्वं निनाथे नमस्त्वं प्रमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अभंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो सहसाय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो सर्वतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व मंजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वोत्कृष्टं नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तं प्रसजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं पनासी सदा सर्वदारिद्र सिद्धं निवासी चार परिचांतो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छांद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मात्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत तत्र विराज ही अब दूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख न राग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो न राग नाम काम बहिर पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन किन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह देव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजम्बव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास।

0: कालांकन अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण गुणाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलचे आदिष्टे तरम सर्वा बरनाडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे व्यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृषय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभेज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभेज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करने के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बे अब है के गैब गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रही है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिया के सर्वत्र थापिया के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदा में गनी बुल शिकस्ते गरी बुल प्रस्ते मुलंदर मुकाने जमीन जुमाने तमीजुल तमाम रजूअल निदाने हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल्क हिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रवाह है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामित्र त्रिवर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चात्री छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनाश है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरकनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग्न शरीक है अमित अमिक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇ ਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਭੂਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਅਨੰਗ ਹੈ, ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ, ਮਦ ਭਾਰ ਛੰਦ ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣ ਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰ ਬਰ ਅਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮਨ ਮਨ ਸੁਨਾਮ ਹਰ ਨਰ ਅਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਮਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਣ ਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਨ ਮੁਦਾਮ ਅਨਛਿਜ ਅੰਗ ਆਸਾਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਪਾਰ ਗਤ ਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨਭਉ ਅਨਾਸ ਤ੍ਰਿਤ ਤਰ ਤੁਰਾਸ ਆ ਜਾਨ ਵਾ ਏ ਕੈ ਸਦਾ ਓਂਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲ ਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਕਰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਛਿਜ ਗਾਤ ਅਜਨਬਾਤ ਅਨਛੰਜ ਗਾਤ ਅਨਰੰਜਵਾਤ ਅਨਟੁਣ ਪੰਡਾਰ ਅਨਠੰਡ ਅਪਾਰ ਆ ਡੀਠ ਧਰਮ ਅਤ ਢੀਠ ਕਰਮ ਅਨਬਰਨ ਅਨੰਤ ਦਾਤਾ ਮੰਤ ਹਰ ਬੋਲ ਮਨ ਸ਼ੰਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਨਾਲੇ ਹਰ ਕਾਲੇ ਹੈ ਕਲਖੰਡਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮੰਡਨ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਕਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਰਬਵਾਰਨ ਹੈ ਧ੍ਰਿਤ ਕੇ ਧਰਨ ਹੈ ਜਗ ਕੇ ਕਰਨ ਹੈ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਜਗ ਜਾਨੀ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਬੰਕਾਰ ਹੈ ਸਰਵਪਾਸੀ ਹੈ ਸਰਵਨਾਸੀ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਬਸਵਰ ਹੈ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਗਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਸ ਹੈ ਕਲਖੰਡਸ ਹੈ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਕਰਨਾਕਰ ਹੈ ਅਜਪਾਜਪ ਹੈ ਅਤਪਾਤਵ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਗਰਤਾਕ੍ਰਿਤਾ ਹੈ ਤਰਨੀ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਮਤੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਕ੍ਰਿਤਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਜਬਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਰਨਾਇਕ ਹੈ ਕਲਗਾਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵੰਬਰ ਹੈ ਕਰਨਾਲਯ ਹੈ ਨਿਰਮਨਾਇਕ ਹੈ ਸਰੂਪਾਇਕ ਹੈ ਭਵ ਪੰਜਨ ਹੈ ਅਰਗੰਜਨ ਹੈ ਰਵਤਾਪਨ ਹੈ ਜਪ ਜਾਪਨ ਹੈ ਅਕਲੰਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਵਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਰਤਾਕਰ ਹੈ ਹਰਤਾ ਹਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮ ਹੈ ਸਰਵਾਤਮ ਹੈ ਆਤਮ ਬਸ ਹੈ ਜਸ ਕੇ ਜਸ ਹੈ ਪਜਾਂਗ ਪੁਰਾ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸੂਰ ਸੂਰਜੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ ਨਮੋ ਤੇਜ ਤੇਜੇ ਨਮੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿੰਦੇ ਨਮੋ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਸੰਤਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਪਰੰਗ ਤਤੰਗ ਅਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੇ ਮੋ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨੇ ਨਮੋ ਜੁਦ ਜੁਦੇ ਨਮੋ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨੇ ਨਮੋ ਪੋਜ ਪੋਜੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਕਲੇ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰੇ ਅਨਾਦ ਭੂਤੇ ਕਲੰਕਾਰ ਰੂਪੇ ਅਕਲੰਕਾਰ ਲੰਕੇ ਨਮੋ ਆਸੇ ਆਸੇ ਨਮੋ ਬਾਂਗ ਬੰਕੇ ਅਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਦਰਕਾਲੇ ਅਨੰਗੀ ਕਾਮੇ ਏਕ ਅਸ਼੍ਰੀ ਛੰਦ ਅਜੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਅਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਅਕਾਸ ਅਗੰਜ ਭੰਜ ਅਲਖ ਅਪਖ ਅਕਾਲ ਦਿਆਲ ਅਲੇਖ ਅਭੇਖ ਅਨਾਮ ਅਕਾਮ ਅਗਾ ਅਡਾ ਅਨਾਥੇ ਪਰਮਾਥੇ ਅਜੂਨੀ ਅਮੋਨੀ ਨ ਰਾਗੇ ਨ ਰੰਗੇ ਨ ਰੂਪੇ ਨ ਰੇਖੇ ਅਕਰਮੰਗ ਅਭਰਮੰਗ ਅਗਜੇ ਅਲੇਖੇ ਪ੍ਰਿਯਾਂਗ ਪ੍ਰਜਾ ਛੰਦ ਨਮਸਤੁਲ ਪ੍ਰਣਾਮੇ ਸੁਮਸਤਲ ਪ੍ਰਨਾਸੇ ਅਗੰਜਨ ਅਨਾਮੇ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੇ ਨਿਰਕਾਮੰਗ ਬਭੂਤੇ ਸੁਮਸਤੰਗ ਸਰੂਪੇ ਕੁਕਰਮੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਸੋ ਧਰਮੰਗ ਪ੍ਰਭੂਤੇ ਸਦਾ ਸਚਦਾਨੰਦ ਸਤਰੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਕਰੀਮਲ ਕੁਰੰਦਾ ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜਾਇਬ ਬਭੂਤੇ ਗਜਾਇਬ ਗਨੀਮੇ ਹਰਿਯੰ ਕਰਿਯੰ ਕਰੀਮੰ ਰਹੀਮੇ ਚਤਰ ਚਕਰਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚਕਰ ਭੁਗਤੇ ਸੁਯੰਬੰ ਸੁਮੰਗ ਸਰਵਦਾ ਸਰਵਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਭੂਤੇ ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਯਾਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗ ਅੰਗ ਭੂਤੇ तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवृति के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पहुन के गौन को जात निवारे पारी प्रजान को पूप बली बरन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पूप अंत को नांगे बाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंस दहें राज हजारे ऊत पवेख पवान के पूप कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जतार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख है सुध सुबा दुरन दुबा सो साज सनह दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परे मन में कर पर बद पंख हले न हलेंगे तोर अरेन मरोर मवासन माते में तंग न मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बड़े आर अवचार इसार की तार बछैया तोर देश बुलंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार जय तुन पापन के बो पुंज खपेंगे सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अब लोग जपेंगे मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वमर साज भरेंगे ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जम्फात भरेंगे जे नर श्री पत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे काम भयो जो दो लोचन मुंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच को सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहुं ले पायन पुत्रयो सिर कहुं ले लिंग ले ढलकायो कहुं लिखियो हर अवाची दिशा में कहुं पुछा को शीश नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
1: कवियो बाज बेनती चौपे हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सब तुम कावो आप हाथ दे मोहि बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रच्छा राख लो।

काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोग सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचान, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह भी सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तज कीनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी। कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो, ताके ताप तनक मैं हर हो, रिद्ध सिद्ध कर।

वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रीतम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्यार। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोविंदनो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण जी त्याई है।

0: प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जेड़ी वक वक जीवां विच परमात्मा ने वक वक तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिमें उदाहरण कई बारी अर्ज करना हुना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जेड़ा है वह सरोवर विच है ते किरण सूरज जेड़ा है वह आसमान विच है। दोनां दा करोड़ा माइल्स दा करोड़ा को दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ा मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक एहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ा को दी दूरी होण दे बावजूद भी उहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। वह किहड़ी ताकत है, वह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जेड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े हुए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने यह ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनों दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक उहनू नजर टिका के देख दिए चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उन्हें ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लतां नू अपने जिस्म नू कमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नू उन्हें सवेर तक लेंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नू सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नू ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़ती है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हू अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नू झुका के अपनी पिठ ते ला लेंदी है ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओ केड़ी खिच है, चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नू किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नू जे किते मनुख समझे उसे खिच नू ही प्रेम किया गया है। हुण ओ दिस नहीं रही पर ओदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लाणी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नू देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिलखोन सुखाले, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇਹ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹਦਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਨੇਹ ਨਹੀਂ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਨੇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੱਕਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਿਖਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਉਸ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੈਨ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਸਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਟਿਕ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਖਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਿਆਰ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਨਿਹੋ ਕਵਲ ਜਲ ਜਾਣੀਐ ਖਿੜ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆਪਸੀ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ? ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਛੱਪੜ ਟੋਬਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਸੁੱਕੇ ਕਦੀ ਟੋਬੇ ਵਿਚ, ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਏ ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਰ ਬਬੀਏ ਬੋਲਦੇ ਵੇਖ ਬੱਦਲ ਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਮੋਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬੱਦਲ ਦਾ ਤੇ ਮੋਰ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਚੜੀ ਤੇ ਮੋਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਖ ਉਹਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਲਏ, ਬਖੇਰ ਲਏ। ਉਸ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੜਾਓ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਪੀਏ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਪੀਆ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾੜ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਪੀਏ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਵਿਚ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਵਿਚ, ਚੱਕਵੀ ਵਿਚ, ਮੋਰ ਤੇ ਬਬੀਏ ਵਿਚ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੂ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਚਕੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਚਕੋਰ ਦੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਚੱਕਵੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੋਰ ਤੇ ਬਬੀਏ ਵਿਲਕਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਰ ਤੇ ਪਤਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਮੌਤ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਹੀ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਖਾਲੇ, ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਖੇਤ ਹੈ ਮਿਲ ਹੋਣ ਸੁਖਾਲੇ, ਨਿਉ ਕਵਲ ਜਨ ਜਾਣੀਐ ਖਿੜ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਲੇ। मोर बाबीए बोल दे वेख बदल काले नार पतार प्यार है मां पुत संभाले पर प्यारिया गुरु नानक दी प्रीत कैसी है पीर मरीदा पिर हड़ी ओ निभ है नाले के मरीद दी ते पीर दी जड़ी प्रीत है ओ तोड़ निभन वाली ओ रस्ते विच टुटन वाली नहीं। आप तवज्जो देना गुरु नानक साहब ने उस करतार दी प्रेमा भगती की थी। ते जदो असी बाबे नानक जी दी बाणी पढ़ने हैं ते उन्हां ने अपनी अमृत बाणी विच अपने मन नू मुखातब करके प्यारे नू प्यार करन दे कुछ जुगतां सानू दसियां। हजूर दी श्री राग विच एक अष्टपदी है उस अष्टपदी दे कुछ पदे मैं आप जी दे समक्ष रखने चाहना हां कि सतगुरु गुरु नानक साहब दी प्रेमा भगती कैसी है। उस अष्टपदी दियां रहाओ दियां तुकां ने रहाओ दे बचन ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार हे मेरे मना कि परमात्मा नू प्रेम तो करन तो बिना तेरा खेड़ा छुट सकदा है कि तू बंधना तो मुक्त हो सकना परमात्मा नू प्रेम करन तो बिना। मन रे क्यों छूटै बिन प्यार गुरमुख अंतर रव रहा हर बख्शे भगत भंडार। गुरु दे राही ये समझ पैंदी है कि परमात्मा सारियां थावां ते रविया है ते गुरु कृपा करे ते भगती दे भंडारे बख्शदा है। रहाओ दी तुक नू फिर समझिए मन रे क्यों छूटै बिन प्यार प्यार तो बिना प्रेम तो बिना उस परमात्मा नू कदी तू खुश नहीं कर सकदा। गुरु तो बिना तेनू प्रेम करन दी जुगत नहीं आउंदी। वैसे तो जे इंसान नू समझ पै जाए कि प्रेम प्रीत प्यार ने ये जितने भी शब्द असी वरतने जे इंसान दे शरीर अंदर तन अंदर परमात्मा ली प्रीत नहीं प्यार नहीं ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे प्रा प्यार तो प्रीत तो बिना जिहड़े मनुखां दे तन ने कहिंदे ने मानो ओह तां इस तरह ने जिवें शमशान भूमि विच मुरदे सड़ के किसे मिट्टी दा ढेर हो जा। ओह तां इस तरह ने कि जिवें मानो कि एक मरिया होया शरीर प्याक है मरे हुए शरीर विच कोई हरकत नहीं ते जिस मनुख दे जिस्म अंदर परमात्मा दा प्यार नहीं सच जाणियो ओह खाए भी पीए भी बोले भी पर गुरु दी नजर विच एक ओ जींदा लाश है ओ मुर्दा है जे उस अंदर प्रीत नहीं तां प्यार तो बिना छुट नहीं सकदा। हजूर दे बचन सी पढ़ने हैं अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत ए सारे गुण होण दे बावजूद भी मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत बाबा नानक जी कह रहे ने मन रे क्यों छूटै बिन प्यार मृतक कईयां नानका जे प्रीत नहीं। भगवंत जे उस परमात्मा ली प्यार नहीं ते सच जानी ओ शरीर मुर्दे दे समान है उस शरीर दा कोई अर्थ नहीं। ओ मुर्दे नू जितना मर्जी कोई शिंगारी जाए ते उस दा अर्थ की है कुछ भी नहीं। हजूर ने कहा प्रीत तो बिना बाबा फरीद साहब दे बचन सी पढ़ने उन्होंने जोबन दी गल की हुण जवानी अपने आप विच परमात्मा दी एक बड़ी वड्डी दात है ते जे किसे बंदे दे कोल जोबन भी है पर जोबन होण दे बावजूद उस दे अंदर प्यारे दी प्रीत नहीं ते मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब विच बाबा फरीद साहब कहिंदे ने प्रीत तो बिना मनुख दा तन शमशान भूमि है प्रीत तो बिना ता जवानी सड़ के राख हो जाए उहदा करना की है। बाबा जी ने अमृत बचन कह जोबन जांदे ना डरां जे सह प्रीत ना जाए कहिंदे ने जोबन जानदा वक्त दे जानदा समय दा जानदा सानू कोई डर नहीं। डर तां उदो है जदों वक्त समा जा जोबन जा जीवन परमात्मा दे प्रेम तो बिना चला जाए सिमरन तो बिना चला जाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने अपनियां गजलां विच पहला शेर ही ये क्या है पहली गजल दा कहन लगे खवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा ऐ मिनसान तू वजूद विच तां आया है कि परमात्मा दी इबादत करें परमात्मा दी बंदगी करें जे परमात्मा दी बंदगी नहीं सी करनी ते फिर इस वजूद विच इस तन विच आउण दा लाभ की। कहन लगे फिर एवें असमान दे थले अपनी जिंदगी दे दिन प्या कटना बंदगी करके ही जिंदगी है जे बंदगी नहीं ते सच जानी फिर जिंदगी नहीं। हवाए बंदगी आवुर्द दर वजूद मरा वगर मैं जो के चुनी आमदन नाबूद मरा, जे उस परमात्मा दी इबादत नहीं ते या अल्लाह या रब मेनू इस शरीर विच रहन दा कोई शौक नहीं, क्योंकि तेरी बंदगी दे शौक करके ही मैं जी रहा हां। प्यारियो तवज्जो दिया जे, बाबा नानक जी ने प्रेमा भगती की ते मैं अर्ज करना पिया बाबा जी दी बाणी विचों पुछ लईए कैसी प्रेमा भगती उन्हां कीती। उन्होंने विच प्रमाण दिता मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, ते बाबा फरीद कह लगे हकीकत है कि जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, फरीदा किती जोबन प्रीत बिन सुख गए कुमलाए, के किते जवानी प्यार तो बिना ना चली जाए, साईं नूं नेह करन तो बिना ना व्यर्थ चली जाए। सच जानो उस महापुरुष दी कली जवानी की नहीं जोबन विच नहीं, वो ता अपने बचपन तो ही रब नूं इश्क करन लग पए। बाबा फरीद साहब अजे बचपना है ते कुरान उन्हां नूं जबानी कंठ हो गई है, अजे बचपना है कि कितना कितना समा रब दी इबादत भी जुड़े रहिंदे ने। आखर वो कैसी परम अवस्था मिली कि जिदन जमीन ते पई कोई खाक मिट्टी अपने मुंह दे विच पाई ते उस मिट्टी विचों भी शक्कर वर्गा स्वाद आ गया। क्यों? अपना अंदर इन्ना कु मिठा हो चुका सी, आप मिठास दे भंडारे बन चुके सन, ते हकीकत एवे असी कहांगे मिट्टी मिठी हो गई, जमीन ते मिट्टी मिठी नहीं होई, असल विच बाबा जी दी रसना दी मिठास करके मिट्टी भी मिठी हो गई। उस महापुरुष वो आप शक्कर गंज है, शक्कर दे खजाने ने। उस महापुरुष ने क्या कहन लगे, जोबन चला जाए प्रीत तो बिना, जवानी चली जाए प्यार तो बिना, जिंदगी दा समा निकल जाए प्रीत तो बिना, ते ए अंदर नू दुख पासदा है। केवल जोबन नहीं अपने अंतले समय भी ओ महापुरुष रब दी इबादत भी जुड़िया है, खुदा दी इबादत भी जुड़िया है, ते जदो नमाज अदा पे करदे ने अचनचेत गशी पई है, बेहोश होके जमीन ते गिर गए, सजदा पूरी तरह कर ना सके। मुरीदा ने बाबा फरीद साहब जी नू संभालिया, संभालन तो बाद उन्होंने बाबा जी दू जदो चलिया पैरां दियां चशियां, उन्होंने खत पकड़ के खत पैर कुटे नपे ते उठ के बैठ गए, ते पहला प्रश्न सी उस महापुरुष ठीक है, कहन लगे नमाज अदा हो गई, मेरा नेम निभ गया, बंदगी वाला समा सही सफल हो गया। बैठे हुए मरीद ने क्या बाबा साहेब नमाज पूरी तौर ते अदा ना हो सकी पूर्ण तौर ते, आप इको दम जमीन ते डिग पे। कहन लगे लियाओ पानी, कराओ मेरा वजू, मैं परत के फिर खुदा दी याद भी जुड़ना चाहना, मैं नमाज अदा करनी चाहना वा। ते किसे ने उथे प्रश्न कर दिता सी कि बाबा साहेब सारी जिंदगी ता अल्लाह ताला दी विरद विच उदे जिक्र विच उदी याद विच बतीत होई, हुण जे नई नमाज हो रही शरीर खेचल विच है, तन नू थोड़ा बहुता खेद है, हुण अज तुसी ए रहन दियो विश्राम करो। उन्होंने उसे वेले पिछे मुड़ के कहा, कहन लगे तेनू की पता मेरा अंदर किथे खलोता होया है, तेनू केवल मेरी बार दी क्रिया दिसी है कि मैं इन्ने साल रब दी इबादत कीती, इन्ने साल मैं परमात्मा दा जिक्र कीता, पर तेनू की पता मैं अंदरों किथे टिकया वा, लियाओ पानी लियाओ आव ते मैं वजू करके परमात्मा दी याद भी जुड़ा, रब दी याद भी जुड़ा। वो महापुरुष कह रहे ने कि वक्त चला जाए प्रीत तो बिना ते व्यर्थ है। बाबा नानक साहब कह रहे ने मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, प्यार तो बिना तू प्रेम तो बिना तेरी बंद खलासी निखोनी। हुन प्रेम बद्धा चक्की कर्म नहीं, प्रेम ता एक अंदर दी खिच है, प्रेम ता आपा वारन वाली एक अंदर दी बिरती है। ते धन गुरु नानक साहब कृपालू ने अपनी अमृत बाणी विच ए उदाहरणा दित्तियां, उस अष्टपदी दी पहली एग्जाम्पल पहली उदाहरण ए वे मैं अर्ज कर रहा, नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिबलाई, कैसी भगती कीती, केवल ता केवल चौंकड़ा मार के नहीं अपने आप नू पूर्ण तौर ते रब दे चरणा विच उन्हां ने फिदा कर दिता, उन्हां ने समर्पित कर दिता। बाबा नानक जी ने उस फिदा होण वालियां कुछ उदाहरणां नूं अपनी बाणी विच दर्ज कर दिता। पुछया सच्चे पातशाह ये तां आप कह रहे हो कि प्रेम तो बिना बंद खलासी नहीं, पर यह दसो प्रीत कैसी करिए, प्यार किहो जिहा करिए। कृपालू दाता जी ने पहला प्रमाण दिता है, कहिंदे कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है। सिर्फ उदाहरण समझण लई है, अपनी जिंदगी दे टुकाण वास्ते ना, के ए उदाहरण केवल विद्वता दी अंदर दी खौ नूं प्रगट कर ले। कथा दा मतलब है कि विचार के, सुन के, पढ़ के, को के उहदे अनुसार अपना अमली जीवन भी ढालना शुरू कर देना। कमल दा फुल पानी विच खिड़िया है, पानी दे विच निक्कियां निक्कियां तरंगा पैदा होईयां, लहरां पैदा होईयां, ते जदों पानी दी लहर इकोदम थोड़ी जी हवा नाल तेज होई ते कमल दी नाड़, कमल दी निक्के जे बूटे दे तने नूं वज्जी, कमल दी नाली नूं वज्जन दी देर सी पानी दी लहर, ते कमल जेड़ा जड़ तो लै के फुल तक पूर्ण तौर ते कंब गया। इकोदम उस लहर ने कमल नूं पछाड़िया, कदी उहनूं लहर धक्का मार के खब्बे, कदी सज्जे, उहनूं सारा दिन लहर अपने ठोकरां दे वास विच केवल अपने ठोकरां नाल खब्बे सज्जे नूं धक्कदी रही। ते बाबा जी ने उत्थे क्या कहण लगे, ओ मना जे प्रेमा भगती करनी आ ते इस कमल फुल तो सिख रब नूं प्रीत किवें करी दी है। नानक नाम निरंजन जान्यो किन्नी भगत प्रेम लिबलाई, किहो जिहा प्यार होवे, प्यार जिहड़ा गिलवे शिके नहीं करदा हुंदा, प्यार कदी उलामे नहीं देंदा हुंदा। ते सच जाण्यो जिहड़ा बंदा मित्रता करदिया होया भी उलामे गिले शिकवे करदा है, वह कदी प्रेमी नहीं हो सकता, वह कदी प्यारा नहीं हो सकता। कहन लगे इस कमल दे फुल नूं पुछ के प्रेमा भगती की है। हजूर ने पुछया कमल दे फुल नूं ते बाणी विच गल्लां दर्ज कर दित्तियां कि ए कमल दे फुल तेनू रब ने सब तो पहला गुण यह दिता है, तू चिक्कड़ विच रह के भी निर्लेप है। दूजा गुण तेनू परमात्मा ने दिता है कि तेरे कुल कोमलता है। तीजा गुण तेनू दिता है तेरे कुल सुगंधी है। चौथा गुण तेनू दिता है तेरे विच खिच है। तू करोड़ा को दूर बैठे सूरज नाल भी गल्ला प्या करना, जिदे कुल सुगंधी होवे, जिदे कुल निर्लेपता होवे, जिदे कुल अपना सुहापन होवे, जिदे कुल दूर टिके कोई प्रेमी नू प्यार करन दी भी जांच होवे, की लोड़े इस मैले जे पानी दियां ठोकरा खान दी। ए पानी उठदा सवेरे लहरां बन के तेरे नाली नू, तेरे इस तने नू रोज ए ठोकरा मार दे, छड परा इहो जिहा पानी नू। हजूर कहिंदे ने उस कमल दे फुल दा उत्तर सी, कहिंदा बाबा जी के असल विच इस पानी दी बदौलत ही मेरी खौंद है। जिस दिन मैं पानी नू छड़ दिता उस दिन जेड़े गुण तुसी मेरे गिनाए ने इन्हां विचों एक भी गुण नहीं रहना। पानी नू छड़न दी देर कि मेरा आपा ही खत्म हो जाना, मेरी खौंद नू खतरा है। कहन लगे ना सूरज दा प्यार, ना इहदे तो निर्लेप दा, ना सुगंधी, ना रूप ते ना भवरे, तां की होया जे पानी ठोकरा मारदा। आखिर जेड़े तुसी गुण गिण के दसे ने ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਠੋਕਰ ਵੀ ਸਹਾਰਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਮਲ ਦੀ ਥਰਾਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਦੇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵ ਨੇ ਕਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਯਕ ਲਖਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਦੀ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਲੜ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਇਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ। ਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰਸ਼ੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, जैसी जल कमले जिमें कमल ते पानी दी प्रीत है, लहरी नाल पछाड़िया जे लहरा ओनू उठ के पछाड़ दिया ने धक्के मार दिया ने, पी विगसै असने ओ लहरा दिया ठोकरा विच भी खसी जांदा है, ओ ठोकरा विचों भी प्रेम दिया पिंगा झुटी जा रहा है। मेरे बाबे नानक ने इस तरह प्रीत की जिमें कमल दा फुल ठोकरा सहार के भी प्रीत प्या करदा सी। जे किसे ने वड्डा चुकिया, जे किसे ने दीवाना किया, जे किसे ने मस्ताना किया, जे किसे ने पागल किया, सब कुछ सह के भी मेरे गुरु नानक साहब ने अपने प्यारे परमात्मा दे नाम नू फिर भी प्रीत की थी। दूसरी उदाहरण कृपालू दाता जी ने अमृत बाणी भी दिती कि किहो जी प्रेमा भगती करदे पए, प्रमाण देंदे ने मना परमात्मा दी भगती जे तू करन तुरिया है ते प्रेमा भगती इस तरह कर जिमें मच्छी ते पानी दा आपसी प्रेम है। वैसे ता प्रीत है मच्छी दिखे कि जितना पानी वध होवे ओना मच्छी खेड़े विच रहिंदी है, जितना पानी घटदा
1: है। You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
2: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया, किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलता, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई ता दुखी है, जे औलाद है ता हुकम विच नहीं है ओ ता दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन, इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना ता मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी, एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए ता फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी ता है ही ऐसी।

0: अष्टपदी
1: जिसके अंतरराज अभिमान
0: सो नरकपाती होवत स्वान
1: जो जाने मैं जो बनवंत
0: सो होवत पिष्टा का जंत
1: आप उसको कर्मवंत कहावे
0: जन्म मरे भोजन परमावे
1: धन भूम का जो करे गुमान
0: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
0: ज्ञान की है मुक्ति अज्ञा सुख पावे
1: धनवंता हुए कर गर्भावे
0: तरण समान का संग न जावे
1: बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस
0: और भीतरता का हुए विनाश
1: सब ते आप जाने बलवंत
0: मैं हुए जाए पसमंत
1: सेना बदे आप अहंकारी
0: धर्म राय तिस करे खुआरी
1: गुर प्रसाद जहाँ का मिटे अभिमान
0: सोजन नानक दरगाह परवान
1: कोट कर्म करे हों तारी
0: शरम पावे सकले प्रथारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
0: हर दरगाह को कैसे गवे
1: आप को जो भला कहावे
0: इसे भलाई निकट में आवे
1: सर्व की रेन जहाँ का मन होए
0: कौन नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कश होए
0: जब इस कौसुख नाही कोए
1: जब यह जाने मैं किस करता
0: तब लग गर्भ जोन में फिरता
1: जब धारे को बैरी मीत
0: तब लग नेचर नाही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: रब कृपा से बंधन टूटे
0: गुरु पर साधना नक हो छुटे
1: सहस कटे लख को उठता वै
0: रतन आवे माया पछे पावे
1: अनक भोग विखिया के करे
0: नै तृप्तावे खप खप मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सपन मनोरथ फिर से सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: दुर्भागी किसे प्राप्त होए
1: कर्ण करावन आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण करावन करना हार
0: इसके हाथ कहां विचार
1: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
0: आपे आप प्रभ सोए
1: जो किस पीनो सो अपना रंग
0: सब ते दूर सब हूं कै संग
1: उदय देख करे विवेक
0: आपे एका पया ने
1: मरे न बिनसै आवे न जाए
0: नानक सधी रह समाए
1: आप उपदेशै समझे आप
0: आपे रचिया सब के साथ
1: आप पीनो अपन विस्तार
0: सब कुछ उसका हो करने हार
1: पोस्ते भिन्न कहो किस होए
0: आंत नंतर एक सोए
1: अपने चलित आप करने हार
0: गौत करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुर प्रसाद किने बखियानी
1: सत सत सत सब कीना
0: कोट मदय किने बिरले चीना
1: भला भला भला तेरा रूप
0: अत सुंदर अपार अनूप
1: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
0: घटघट सुने सरवन बखियानी
1: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
0: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
1: संत शरण जो जन पर सो जन उदर नहार
0: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
1: संत का दुखन आर्जा कटे संत

0: रहता उसका भी हो मोख।
1: संत का दुखी सदा पवित्र,
0: संत का दुखी किसी का नहीं मित्र।
1: संत के दुखी को डान लग गए,
0: संत के दुखी को सब त्याग गए।
1: संत का दुखी महा अहंकारी,
0: संत का दुखी सदा बेकारी।
1: संत का दुखी जन्म मरे,
0: संत की दुख न सुख ते तरे।
1: संत के दुखी को ना ही ठाऊं,
0: नानक संत भावता लय मिलाए।
1: संत का दुखी अद बीज ते टूटे,
0: संत का दुखी कित काज न पहुंचे।
1: संत के दुखी को उदयान प्रमाइये,
0: संत का दुखी उजड़ पाइये।
1: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
0: जो सास बिना मृत की लोथा।
1: संत के दुखी की जड़ किस नाही,
0: अपन बीजिया पे ही खाए।
1: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
0: नानक संत भावता लय उबार।
1: संत का दुखी इं बिल लाए,
0: ज्यो जल बे हून मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा,
0: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे।
1: संत का दुखी छुटे अकेला,
0: जो गुआर तेरे खेत माहे दुहेला।
1: संत का दुखी धर्म ते रहत,
0: संत का दुखी सत मिथ्या कहत।
1: कीर्तन का तुर ही पया,
0: नानक जो तिस भावे सोई थिया।
1: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
0: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए।
1: संत का दुखी सदा सहकाइये,
0: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइये।
1: संत के दुखी की पूजा न आसा,
0: संत का दुखी उठ चले निराशा।
1: संत के दुख न त्रिष्टे कोई,
0: जैसा भावे तैसा कोई होए।
1: पया कीर्तन मिटे कोई,
0: नानक जाने सच्चा सोए।
1: सब कर तिसकी हो करने हार,
0: सदा सदा तिसको नमस्कार।
1: रबी उसत करो दिन रात,
0: तिसे त्यागो सास गिरा।
1: सब कछ वर्त तिसका किया,
0: जैसा करे तैसा को थिया।
1: अपना खेला करने हार,
0: दूसर कौन कहे विचार।
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे,
0: वडभागी नानक जन से श्लोक।
1: तजो सियान पुसुर जन हो, सिमरो हर हर राय।
0: एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पौ जाए। अष्टपदी
1: मनुख की टेक बिरथी सब जान,
0: जीवन को एक है भगवान।
1: जिसके दिया रह अगाए,
0: और न तृष्णा लग गया।
1: मारे रखे एको आप,
0: नानक का कृष्णा ही हाथ।
1: इसका हुक्म भू सुख होए,
0: इसका नाम रख कंठ परोए।
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
0: नानक बिघन न लागे कोई।
1: उसत मन में कर निरंकार,
0: कर मन मेरे सत व्यवहार।
1: निर्मल रसना अमृत पियो,
0: सदा सहेला कर ले जियो।
1: नैनो बेग ठाकुर का रंग,
0: सह संग बिन सह सब संग।
1: चरण चलो मार्ग गोविंद,
0: मिटे पाप जपिए हर बिंद।
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा,
0: अदर ज्ञान नानक उज्जल मथा।
1: बड़ भागी ते जन जग माहे,
0: सदा सदा हर के गुण गाहे।
1: राम नाम जो करे विचार,
0: चेतन मंतगनी संसार।
1: मन तन मुख बोले हर मुखी,
0: सदा सदा जानो ते सुखी।
1: एको एक एक पछानै,
0: तुत कियो सो जी जानै।
1: नाम संग जिसका मन मानिया,
0: नानक तने निरंजन जानिया।
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै,
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझै।
1: सात संग हर हर जस कहत,
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत।
1: आन दिन कीर्तन केवल बखयान,
0: मैं सोई निर्वाण।
1: एक ऊपर जिस जन की आशा,
0: उसकी कटिए जन की फसा।
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
0: नानक प्रसन्न लागे दुख।
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे,
0: सो संत सोहेला नहीं दुलावे।
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
0: सो सेवक को किसते डरे।
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाया,
0: अपने कार्य में आप समाया।
1: सोधत सोधत सोधत सीजया,
0: प्रसाद तत् सब पूजया।
1: जब देखो तब सब शमूल,
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल।
1: मैं किस जन मैंने किस मरे,
0: अपन चलते आप ही करे।
1: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट,
0: कार्य तारी सब सृष्ट।
1: आपे आप सगल में आप,
0: अनक जुग त्रच था प्यो था।
1: अविनाशी ना ही किस खंड,
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड।
1: लख पे पुरख प्रताप,
0: आप जपाए था नानक जाप।
1: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत,
0: सगल संसार उदर तन मंत।
1: प्रभ के सेवक सगल उदारण,
0: प्रभ के सेवक दुख विसारण।
1: आपे मेल लय कृपाल,
0: गुर का शब्द जप पै निहाल।
1: गुर की सेवा सो ही लागे,
0: जिसनो कृपा करे बट भागे।
1: नाम जपत पावे विश्राम,
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान।
1: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
0: सदा सदा बसै हर संग।
1: सुपाई हो वैसो होए,
0: करने हार पछाने सोए।
1: सबका किया जन मीठ लगाना,
0: जैसा सात ऐसा दृष्टाना।
1: जिसकी उपजे तिस माहे समाए,
0: सुख निदान उन्हों।

0: नानक कारना कथनी जाए कीता करना सरगुरदा
1: भला दूजा है जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास एक ना हुकुम समाए।

जियो पिंड सब दिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़े है चंगा अपना करप नो नीज सदाइए जे जरवाना पर हरे जरवेश करेंदी आइए को रहना भरिए पाइए को रहना भरिए पाइए।

पौड़ी बिन सतगुर कि ना पायो, बिन सतगुर कि ना पाया। सतगुर विच आप रखे उन कर प्रगटाक सुनाया। सतगुर मिलिए सदा मुक्त है जिन विच हमो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सचो सच त्याया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सुख तो धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देव चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा।

नित शक शके गुरत थे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर स्लो महला पहला पुरखा बिरखा तीर था तटा मेगा खेतहा दीपा लोहा मंडला खंडा बिरपंडहा अंडू जेरी

पौड़ी सच्चा साहेब एक तुझ ने सचो सच बरताया, जिस तू दहेज से मिले सच ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिए सच पाया, जिनके हृदय

0: तुम्हा पुरा तपे का सत गिर बाहो कलजुग रथगन का कूड़ा गैर बाहो
1: पहला शाम कहे सितंबर समी।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद होए सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप पद करनी।

0: ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया। सबको आख्या पाए हुए प्राणा सटिए फिर पाया होर नानक तग न टुटे जे तग होवे जो।
1: महला पहला नाय मनिए पत उपजे शाला ही सूत दरगे।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: 1550 KRPI Radio te chal raha hai live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
2: नमस्तल परनामे समस्तल परनासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे निरकामं बेपूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सो धर्मं बेपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल को निंदा समस्तल निवासी अजाय बिभूते गजाय बगनी में हरियं करियं करी मुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते।

कोट तुरंग कुरंग सकूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बदन आवत शीस न जात बिचारे एत भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे पाए पधारे जीत फिर सब देश दसान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भवेख भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे

हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया सथूला सा पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पढ़ पढ़।

तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जाग में आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर

0: सतनाम कर्ता पुरुख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरुप्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानके राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जीओ पते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो दर कहा सो घर कहा जित बह सर्व संभाले। ओ दर कैसा है ओ घर कैसा है हे प्रभु जिथे बैठ के तू तमाम ब्रह्मंड दी जीवां दी संभाल करदा। फिर सतगुर रामकली राग विच ऐसा कहंदे ने रामकली मल्ला पहला जित दर वसें कवन दर कहिए दरां भीतर दर कवन लहे जिस दर कारण फिरां उदासी सो दर कोई आए कहे सारे दरां तो उदास होके निराश होके जिस दर दी मैं तलाश कर रहा कोई दसे कोई ते दसे। एक हकीकत है जितने चिर तक संसार दी प्यास बड़ी प्रबल है निरंकार दी प्यास पैदा ही नहीं होती। जितने चिर तक पदार्थां दी भुख बड़ी प्रबल है परमात्मा दी भुख पैदा ही नहीं होती। ऐसा क्यों हो जाता है? दरअसल शरीर दियां जिहड़ियां लोड़ां ने उन्हों मन अपनियां लोड़ां बना लैंदा। कुछ लोड़ां शरीर दियां ने पर उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा है तो लोड़ां लोभ बन जांदियां तो फिर लोभ दी कोई सीमा नहीं है कोई सीमा नहीं है। गुरबाणी दी जो बारीकियां ने मैं आप जी दे सामने रख रहे हां जिस दिन सच्चे नाम दी भुख पैदा होई सच्चे नाम की लागे भूख तो समझ लेना जिहड़ी झूठ दी भुख सी वो शांत हो गई। झूठ किसनों कहंदे ने जो है ते नहीं हो जांदा उन्हों मिथ्या कहंदे ने है पर नहीं हो जांदा। बचपना है सी नहीं हो गया जवानी है एक दिन नहीं हो जाती बुढ़ेपा है एक दिन नहीं हो जाता ये जीवन है एक दिन नहीं हो जाता। इन्हां अखां नाल जो कुछ भी दिखाई देता है जो है वो नहीं है देख बदल जाता है उन्हों मिथ्या कहंदे उन्हों झूठ कहंदे कूड़ सब संसार। जितने चिर तक उसकी प्रबल भुख है परमात्मा की भुख पैदा ही नहीं आती। संसार दियां लोड़ां ने और लोड़ां इस तन दियां ने और उन्हां लोड़ां नाल मन अपने आप नूं जोड़ लैंदा तो फिर लोड़ां लोभ बन जांदियां ने और मन की यात्रा रुक जांदी है। ऐसा नहीं कि मन टिक जांदा है, मन गर्दिश दे च रहिंदा है, वो सही गर्दिश दे च जिन्हों घूमण घेरी कहिंदे ने, जिन्हों चक्कर कहिंदे ने और मन सीधे रस्ते तो भटक जांदा है। तन पदार्थ है, पदार्थां तो बनया है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मोल पछाण ये पदार्थां तो नहीं बनया, ये सीधा जोत स्वरूप है। खैर हुण मैं मूल गल आप जी दे सामने आरंभ करा। अनंत काल तक जो धुंध सी, ये पूरा खुलासा आप सरवन कर रहे हो, अरवद नरवद धुंधु कारा धरण न गगना हुक्म अपारा नांद न रैन चंद न सूरज सुनने सुन समाद लगाएगा। ये दास ने काफी खुलासा थोड़े सामने किया है। धुंध ही धुंध से, उसे धुंध दे एक धमाका होया, आवाज हुई, एक कवाओ होया, एक बोल होया, कीता पसाओ एको कवाओ। तो वो कवाओ की से, वो ब्रह्मंड दी पहली आवाज से, पर वो आवाज की से कलगीधर कहिंदे ने ओ अंकार आद कथनी अनाद, अनादि कथनी पहली आवाज की सी ओ अंकार। इनू कबीर भी कहिंदे ने ओ अंकार आद मैं जाना लिखिया रमेटे ताए नवाना। इनू धन गुरु नानक देव जी महाराज ते बड़ी लंबी चौड़ी बाणी च बयान करते हैं और उस बाणी का नाम भी है ओ अंकार। ओ अंकार ब्रह्मा उत्पत, ओ अंकार किया जनचित, ओ अंकार सैल जुगवै, ओ अंकार वेद निर्मय। हुण इस दे च मैं थोड़ा समा ना लवां क्योंकि मैं सारा खुलासा कर बैठा। इस धुन तो अरबां खरबां सूरज पैदा, पहले सूरज नहीं सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है, ना दिन सी ना रात सी ना सूरज सी ना चंद्रमा सी ना ए जमीन सी ना आसमान सी, ना दिन रैन चंद ना सूरज सुनने सुन रहा है। अरबद नरबद धुंधु कारा धरण ना गगना, ए धरती नहीं सी, गगन भी नहीं सी, ये ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे नहीं सन। इस धुंध दे एक कवाओ होया, कवाओ ओंकार, उस तो अरबां खरबां सूरज बने, एक एक सूरज दे कई कई टुकड़े, धुंध पानी बन गई, ये धरण ये धरती सूरज दे टुकड़ा। समा पाके जब ठंडी हुई तो ये फिर पत्थर दे रूप दे प्रगट हो। संसार दे आकार पहले पत्थर दा बनया, पत्थर लखां साल दी लंबी यात्रा तो बन मिट्टी बन बनस्पति बनया, बनस्पति लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद पशु पक्षियां दी शक्ल दे प्रगट होया, और पशु पक्षी लखां साल दी लंबी यात्रा तो बाद जिस रूप दे प्रगट होए उन्हों मानव कहिंदे ने, मनुख कहिंदे। चूंकि मनुख उन्हां सारियां तो लंघ के आया है तो कुछ ना कुछ संस्कार सारियां दे इहदे विच है गए। पत्थरां तो लंघ के आया है, बनस्पति तो लंघ के आया है, पशुआं तो लंघ के आया है, मनुख बने। मैं एक मिनट लवा, पत्थर टोटली सुत्ता होया तो सुते हुए की कोई लोड़ नहीं आती, पत्थर की कोई लोड़ नहीं। पत्थर जब मिट्टी बन के बनस्पति के रूप में प्रगट होया तो थोड़ी जिहा बनस्पति जागी, उसकी लोड़ है पानी, उसकी लोड़ है प्यास लगती है। बनस्पति ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਖਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਮਨ ਇਸ ਮਾਨਵ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਹੈ, ਮਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਾਨੁਸ਼ ਮਨੁੱਖ। ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਬਨਸਪਤੀ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਪੱਥਰ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਚੌਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਪੰਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਬਨਸਪਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚ ਪੱਥਰ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਨੇਚਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਤ, ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਹਾ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਮਹਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਸੂਰਜ ਹੋਏ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੰਤ ਧਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਹੋਏ, ਬਨਸਪਤੀ ਹੋਈ, ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ, ਮਾਨਵ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਨ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਕੁਛ ਹਾਥੀ, ਗਊ, ਮੋਰ, ਹੰਸ, ਮਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਇੱਕਦਾ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਤਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਛੜ ਗਿਆ, ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸੋਚ ਸਕਣ, ਅਜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੋ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੋ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਤੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਾਪ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਅ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਪ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਸੰਸਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਲੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾ ਗਈ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਦੀਵਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਦੀਪਕ ਜਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਦਰ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਨੇਰਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਾਨਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, 5:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੌਣ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੀ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਹੋ, ਭਵਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਦਾ। 21-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ 21-22 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਭਵਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 21-22 ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਵਿਸ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਵਿਸ਼? ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਭਵਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਜੂਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਗੁਲਿਸਤਾਨ ਬੋਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਦਬਖਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਰ ਇਨਸਾਫ ਪੁਰਸੀ ਬਦ ਅਖਤਰ ਕਸ ਅਸਤ ਕੇ ਦਰ ਰਾਹ ਤਸ਼ ਰੰਜ ਦੀ ਗਰ ਕਸ ਅਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰੰਜ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਚੋਂ ਹਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਦਬਖਤ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭੋਗੇਗਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਅਭਿਆਸੀ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ। ਹਰੀ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਸਮਦਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਵੈਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਆਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਐ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ, ਸੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਵਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਮਨ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਪਰਦੇਸੀ ਵੇ ਪਿਆਰੇ ਆਓ ਘਰੇ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। फिर कलेश बने आ रहेगा, फिर बेचैनी बनी रहेगी। ये समझ जिसनु आ जाए, समझ लो मन ज्यादा जाग है। मैं अर्ज करा हूं मनुख दे अंदर, किसी दे अंदर पशु दे संस्कार बड़े प्रबल होणगे, किसी दे अंदर बनस्पति दे, किसी दे अंदर पत्थर दे। असी कह देने ये ते पत्थर दिल है, इहदा ते दिमाग पत्थर है। हिटलर मोसोलिनी औरंगजेब चंगेज खान हालांकि असी कह सकते हैं दिल नहीं सी पत्थर से, दिमाग नहीं सी पत्थर से। इन्ना कठोर मनुख, इतना सख्त मनुख, बस्तियां उजाड़ के लंघदा सी चंगेज खान, लाशां नूं तड़पदियां देख के हलाकू हसदा हुंदा सी, तिन्ना भरावां नूं कतल करके औरंगजेब ने जशन मनाया सी। 3 करोड़ बंदियां दा कातल है हिटलर, ये कोई पत्थर दिल कर सकता है, पत्थर दिमाग कर सकता है। आकार रूप दे पहले पत्थर प्रगट होया, वो जो अग दा गोला ठंडा होया वो पत्थर दे रूप दे प्रगट होया। आकार पहले पत्थर है। मनुख करीबन करीबन अपने पिछोकड़ नु पूजदा रहा है, ये भी मैं अर्ज करा। सारी दुनिया च पत्थर भी पूजे जाते, बनस्पति भी, दरख्त भी पूजे जाते ने, और पशु पक्षी भी पूजे जाते। अज भी स्नैक टैंपल बहुत वड्डा चाइना दे चाहे मलेशिया दे चाहे सप्पां दी पूजा चाइनीज लोग करते हैं। भारत दे च गऊ दी पूजा, सप्पां दी पूजा, नाग पंचमी एक बहुत वड्डा त्यौहार है। दरख्तां दी पूजा, पिपल दी पूजा, जंड दी पूजा, बोड़ दी पूजा, बेरियां दी पूजा आदि काल तो चली आ रही है। ऐसा देखे जिस जिस पत्थर नो सुभाग मिल गया, पत्थर ही हीरा बन जांदा, पत्थर ही मोती है, पत्थर ही मूंगा है, पत्थर ही पुकराज है, पत्थर ही नीलम है, पर ताज दे जड़िया जांदा है। ये भी मैं अर्ज करा, नीलम दा मोर अकाल तखत ते पे है, बड़ा खूबसूरत। थाईलैंड देश नीलम दी मूर्ति है महात्मा बुद्ध की, कहिंदे ने घट तो घट ओ मूर्ति अज दे हिसाब नाल 20 करोड़ रुपए दी है। पूरा नीलम दा पत्थर उदी मूर्ति बनाई है। तो हैं ते ए भी पत्थर चमक गए ने, जरा कोमल हो गए ने, रोशनी आ गई है। तो पत्थर भी कीमती हो सकता है, वनस्पति भी कीमती हो सकती है। चंदन बड़ा कीमती है, कुछ फूल बड़े कीमती ने, केसर बड़ा कीमती है, ऐते वनस्पति। कुछ पशु भी बड़े महान ने, गऊ है, हाथी है, घोड़ा है, मोर है, हंस है। इस वास्ते कोई बड़ा पवित्र होवे ते कह देने ऐते हंस वर्ग है, कोई बड़ा शरीफ से भले मानस हो वैसे ही कहने निरी गऊ है, निरी गऊ है। बड़ा बहादुर हो तो इसी कह देना निरा शेर है, तो शेर दिल है, शेर है। जिंदगी देख कोई कीमत उसने प्राप्त कर ली है, कोई रब्बी रस मिल गया, कहने ते हीरे वर्ग है, निरा हीरा। तस्बीहां ते देंदे पत्थर चमक जाए ते मनुख दे अंदर चमक ना पैदा होवे तो फिर पत्थर मनुख नाल वग गए। वनस्पति देच महक आ जाए ते कोमलता आ जाए ते मनुख देच कोमलता ना आवे ते महक ना आवे तो ये वनस्पति नालों पछड़े होया। पशुआं देच दलेरी भी आ जाए, शराफत भी आ जाए, भले मानसी भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए ते मनुख देच ना आवे तो ये नालों पशु चंगे ने, कुछ पशु चंगे ने। ये भी मैर्ज कर दें, मनुख होके चमक नहीं आई, पत्थर चमक गए, पत्थर चमक पैदा हो गई। मनुख होके हृदय चानना नहीं आया, पत्थर चमक गए ने, हीरे चमक जाते ने। कोहो नूर हीरा जिहड़ा इंग्लैंड दे पिया उहदे ते रोशनी ऐ ते हीरा। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, मन जिस दिन पूरा जाग जाए तो हीरे की ने ते गऊ की है, चंदन की है, मनुख दा मन परमात्मा हो जाता है।
1: ईश्वर हो जाता।
0: बिगड़ो कबीरा राम दवाई साच भयो अन कदे न जाए, नानक लीन भयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। हुण मैं अर्ज करा, जितना मन किसी का जागया है इंसानियत उस दे च उतनी है, उस तो ज्यादा नहीं है। जिड़ा अचेत भाग मन दा है वो पशु होवेगा, बनस्पति होवेगा, पत्थर होवेगा। बड़ा कठोर व्यवहार है, बड़े सख्त बोलने, दिल बड़ा पत्थर है। अजे पत्थरां दे संस्कार बड़े प्रबल ने, थोड़ा जिहा जागा है बाकी सुत्ता पिया है, जिवें पत्थर सुत्ता होया है। पत्थर पूरन सुत्ता होया है, परमात्मा पूरा जागया होया है। सुते दी यात्रा है जागे, प्रकृति पत्थर नू थोड़ा जगांदी है बनस्पति दे रूप च, होर थोड़ा जगांदी है पशु पक्षियां दे रूप च, ते प्रकृति जगांदी है पशु पक्षियां नू मनुख दे रूप च, ते मनुख नू खुला छोड़ देता है हुण तू आप जाग। मेहनत कर, यतन कर, क्यों हर चे जूद बरायद देर ना पाया। जिहड़ी चीज छेती मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनुख कदर नहीं करता, नहीं करता। प्रभु दा नियम ए मेहनत करे, जिन्नी नाम दे आया गए मुशक्कत घाल, गालना गाले गालना घाल गाल के कुछ मिले, कुछ प्राप्त होवे। कारण मैं फिर अर्ज करा, जिहड़ी चीज मुफत दे च मिल जाए बिना मेहनत दे मिल जाए मनुख कदर नहीं करता। होती तो प्रभु का यह नियम परमात्मा ने खुला छोड़ देता है मनुख ने। मनुख चौराहे ते खड़ा है, अगर अग्गे चला गया तो परमात्मा बनेगा, पछड़ गया तो यह पशु बनेगा। शरीर का अंत होया तो अजे जन्म नहीं होया, सज्जे चला गया तो देव बनेगा, एक पवित्र रूह भटकती रहेगी। खब्बे गया तो एक मलीन रूह है, इनू भूत प्रेत कहते हैं, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गा। सुखमनी साहब, 6 अरब के करीब इस वक्त जमीन के उत्ते मनुख ने, तो इतनिया ते रूहां समझ लेनिया चाहिए ब्रह्मंड दे च हैं। चंगियां नू देव कहते हैं, माड़ियां नू भूत प्रेत कहते हैं। और धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी इसका जिक्र कर दें, कहूं जच गंधर्व हो रग, कहूं विद्याधर, कहूं भय किन्नर पिसाच, कहूं प्रेत पिसाच, भूत प्रेत पिसाच। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। सूक्ष्म शरीर जद इस अस्थूल शरीर दे चो निकलता है, सारे संस्कार उसे दे चौंदे ने चंगे ते माड़े, उन्हें ही संस्कारां दे मुताबक अगे जन्म आउंदा है। लेकिन बहुत माड़े संस्कार ने, जिवें हिटलर, मोसोलिनी, चंगेज खां, हलाकू, औरंगजेब, हरनाकश, इन्हां नू छेती जन्म नहीं मिलता। इन्ने माड़े संस्कार, पत्थर दिल पत्थर दिमाग, कोई बिल्कुल कसायण ते डायण मां होवे उहदे राही इन्हां दा जन्म होएगा, उंज नहीं होएगा। दूसरे देव ज्ञानी सन, जप करते सन, तप करते सन, परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, मुक्त नहीं हो सके। जिमें 100 मील की वाट होवे, 90 ते तय की थी, पर शरीर का अंत हो गया।

मेरे गुरु साहब तो कहने कीता करना सर्ब रजाई किच कीचे जे कर सकी है साढ़े कोल की ताकत असी कुछ कर सकी किता करना सर्ब रजाई किच कीचे जे कर सकी है अपना कीता किचू न होवे ज्यों हर भावे त्यों रखिए मेरे खर जियो सब को तेरा वस असा जोर नाही यह है समर्पण ये तेरे हाथ च मैं अर्ज की समर्पण वाला तरीका बड़ा वधिया जे रब नाल संघर्ष करने वाला तरीका बड़ा गलत है आखन जोर चुपे ना जोर जोर ना मंगन दे ना जोर जोर ना जीवन मरना जोर जोर ना राज माल मनसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टे संसार जिस हाथ जोर कर वेख है सो जिदे हाथ ताकत उन्हें अपनी ताकत लानी तेरी ताकत काम नहीं आनी जिस हद जोर कर वेख है सोए नानक उत्तम नीच ना कोई महाराज कह रहे हैं मेरे खर जियो सब को तेरा वस असा जोर नाही जे किच कर हम साके ज्यो पावे त्यों बख्श इनू गुरु जी ने कहा जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा मैं बेनती करा पहला शब्द में वरत्या सी जी सबर दूजा शब्द रजा तीसरा तस्लीम ए तीसरी अवस्था ओ वे प्यारियो जिथे रब दी वैगुरु दी गुरु दी वापरी कोई खार गल ही मिठी लगन लग पैंदी जिनू आपा कहने भाणा मिठा करके मन्या गुरमुखो तीसरी अवस्था है जदों बंदे नू परमात्मा दी कीती होए तेरा किया मीठा लग है हर नाम पदार्थ नानक मांग है ओ चीज मिठी लगन लग पैंदी जो परमात्मा कर रहा है देखो अज असी भाई साहब भाई तारू सिंह जी नू याद कर रहे हैं मैं थोड़ा जा आप जी नाल इतिहास जरूर सांझा करके जाना क्योंकि उन्हां दा परसों शहादत वाला दिन निकले ते अक्सर असी सुनने भाई साहब शहीद होए पर किवें शहीद होए आपां कहां खोपड़ी ला के खोपड़ी तो बाद तां जींदे रहे हो अंतला समा रतन सिंह पंगू लिखदा है कि साखी तारू सिंह बदेही न्यंग की शब्द वर्द है बदेही दा लफ्जी अर्थ हुंदा देह विच रह के भी देह तो उपर उठ जाना बदेही दा अर्थ शरीर च रह रहा है ते शरीर तो उपर उठ रहा है भाई तारू सिंह जी दा जिहड़ा पिंड है आप जी नूं पता होना है माझे दे विच तीन चार पिंड बड़े नेड़े नेड़े शहीदां दे एक सिंघपुरा एक जी अपना पाहो पिंड ते तीसरा पूला मैं तकरीबन दो कथावां ते कथा करके एक ते भाई साहब दे पिंड उन्हां दे खेतां च गुरुद्वारा भाई तारू सिंह जी उन्हां दे पूला पिंड ते पूले दे बिल्कुल नेड़े है बाबा दीप सिंह जी दा पिंड पाहू पिंड याद रखो सुल्तान पिंड अमृतसर च है पाहू पिंड बाबा दीप सिंह जी दा जन्म स्थान है मैं जात गोत नहीं करदा दोनों संधू ने भाई तारू सिंह जी भी ते बाबा दीप सिंह जी भी भाई साहब भाई तारू सिंह जी इन्हां बारे एक खोज ए भी है एक विद्वान ने यह भी लिखा इन्हां दे पिता जी एक ने लिखा कि मुक्तसर दी जंग विच शहीद हुए सन उन्हां शब्द कहे इन्हां दे सन्मान योग पिता दा नाम सी भाई जोध सिंह जी भाई तारू सिंह जी दे पिता दा पिता शहीद होया है एक इन्हां दी भैण सी भैण सिरों नंगी का मतलब समझदे ना ओदे हसबैंड दी ओदे पति दा अकाल चलाना हो गया सी उस बीबी दा नाम सी बीबी तारो फिर सुनियो भाई तारू सिंह दी भैण दा नाम बीबी तारो है इन्हां दी माता ते दोवें भैण भरा ते इन्हां दे खेत अज भी है ने जी जिथे गुरुद्वारा बनिया जिथे दुष्ट पूला रहिंदा सी ज्यादा पूला जरा ओदे करके पिछले दिन ही भाई बलविंदर सिंह उन्हां दा जिक्र होया जटाने दा याद रखियो असी जदों कॉलेज पढ़दे सी उन्हां दा पिंड बिल्कुल साडे कॉलेज दे नेड़े सी जटाने दा क्योंकि हकूमतां बाद विच बहुत कुछ कर दिंदियां ने ओह जदों भी मिलदे सन ना भाई बलविंदर सिंह चलो उदों इक तिगर भी इक्को जी उम्र दे सारे सी इह नहीं कि मैं बहुत उन्हां जानना पर सच्ची मुची ओह सिंह जदों भी मिलना ओदे बुल गुरु दी बाणी दे जा विच हिलदे ही रहिंदे सन ए पूला क्योंकि जदों जो पूले दा जिक्र हुंदा ते ओह दूजा दुष्ट सामने आउण लग पैंदा है ना नहीं असल च उस थां ते कब्जा कीता सी इहने ओह खंडरात हो गया पूला जिहड़ा भाई साहिब दा गुरुद्वारा भाई गुरु इकबाल सिंह बनवाया उत्थे इहदा जिहड़ा ऐशो आराम बना रहा

महसूस साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत।

हों मैं रोग मानक को दीना, काम रोग मैं गलवस कीना, दृष्ट रोग पचमुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिशे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी।

0: प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकते हो।
0: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
2: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण @604581 1900।

0: kid.
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: फैमिली केयर फार्मेसी
3: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
2: जां कॉल किरण @604581 1900।